0: 007. Visit Dr. Sucheta Skin Clinic, A56 First Floor Bhagat Singh Colony, behind Sukham Tower, Bhiwadi.
1: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: सिर्फ दिल टूटा है, सांस नहीं, धड़कनों में रवानी अभी बाकी है। प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या, जिंदगी की कहानी अभी बाकी है।
1: हाय दिल तोड़ के।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
7: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
8: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
9: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
10: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
11: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
12: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
11: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
13: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी, आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाए। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल

0: X-ray, clinical lab, TMT, audiology or speech therapy, fiber optic bronchoscopy, skin prick and blood allergy test. Allergy ka jar se ilaj. Hamare expert doctors hain. Medicine, surgery, ENT, head and neck surgery, OBS and gynae, orthopedics, oral and maxillofacial surgery, cashless facility, sabhi TPA ke saath. To ab tension mat lo. Apex Hospital, Dharuhera, plot number 5, sector 6 aur Bhiwadi, B83, Bhagat Singh Colony. Bas ek call ya ek visit. No hai 860-72-74999.
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मैस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मैस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरि राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्यों किया लक्ष्य? क्यों?
1: मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ I love you.
0: बिल्कुल झूठ

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिथोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिथोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
6: यहां उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
5: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
7: अरे कहाँ जा रही हो?
8: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
7: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
8: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
7: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, Shop No. 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावलू, हरियाणा। संपर्क करें 9995336111 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
9: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, Plot No. 5, Sector 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा Level 1 and 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351-004500।
11: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
12: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
1: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
0: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
1: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
0: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारों की रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
7: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार आशीर्वाद वोट के रूप में सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाए। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
8: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूँ। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूँ और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
9: क्या कर रही है?
10: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
9: फिर से? अभी तो गई थी।
10: हाँ, फिर से जाना है।
9: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
10: गाड़ी नॉट इन बजट।
9: अरे गांधी मोटर्स है ना?
10: गांधी मोटर्स?
9: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
10: तो कब चलें?
9: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
11: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
12: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
13: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
14: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
15: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
14: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
15: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
14: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
16: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी, आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें, उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूं। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूं। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूं। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियां हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधुड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है।
7: कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
8: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
9: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
8: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
9: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
8: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
10: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
11: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
10: बोल लाल टॉप, CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
12: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
13: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
14: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
15: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधुड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
5: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
6: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
5: गुरुग्राम? इतनी दूर?
6: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
5: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
6: मतलब?
5: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
6: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
5: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
7: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
8: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
9: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
10: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
11: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
12: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
13: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
12: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
13: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।

0: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
1: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
2: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
1: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
3: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
4: बोलिए मुझे जीजा जी।
5: क्या जी?
4: क्या आपने लगाई PNG?
5: हाँ जी।
4: क्यों जी?
5: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
4: और सेफ्टी
5: की चिंता स्टॉप,
4: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
5: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
4: हाँ जी
5: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
4: बिल्कुल सही।
5: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
4: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
6: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
4: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
6: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूल बाग थाने के पास ही है ये।
4: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
7: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
8: अरे इसमें क्या है?
7: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
8: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
7: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
8: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
7: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
8: इनका एड्रेस क्या है?
7: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
7: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
8: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूँ। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूँ और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
9: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, टीएमटी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी टीपीए के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
10: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
11: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
12: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
11: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
13: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
14: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
15: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
14: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
15: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
16: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे, इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन। जय हिंद, जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
5: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
6: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
5: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
6: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
5: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
7: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
8: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
7: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
9: भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिथोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिथोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
7: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
8: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
9: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
8: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
10: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर, ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
3: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
2: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
3: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
2: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
4: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
5: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
4: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
5: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियां हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाए। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
6: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
5: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
7: अरे कहाँ जा रही हो?
8: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
7: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
8: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
7: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9995336111 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
9: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
11: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
12: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी, आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा

0: नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूँ कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिदौड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्ज्वल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
4: क्या कर रही है?
5: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
4: फिर से? अभी तो गई थी।
5: हाँ, फिर से जाना है।
4: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
5: गाड़ी नॉट इन बजट।
4: अरे, गांधी मोटर्स है ना?
5: गांधी मोटर्स?
4: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
5: तो कब चले?
4: अरे, इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
6: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000014 पर।
7: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
8: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
9: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
10: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
9: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
10: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
9: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
11: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए। विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
8: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
7: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
8: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
7: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
9: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
10: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
9: बोल लल्लनको CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
11: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
12: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
11: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
13: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहे बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
7: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
6: गुरुग्राम? इतनी दूर?
7: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
6: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
7: मतलब?
6: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
7: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
6: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
8: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
9: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
10: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
6: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
7: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
11: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
12: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
11: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
12: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी, आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिथोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिथोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
7: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
8: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
9: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
11: बोलिए मुझे जीजा जी।
12: क्या जी? कि आपने लगाई PNG?
11: हाँ जी।
12: क्यों जी?
11: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
12: और सेफ्टी
11: की चिंता स्टॉप,
12: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
11: मतलब
12: एक्स्ट्रा खर्चा
11: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
12: हाँ जी
11: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
12: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
11: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
12: बिल्कुल सही।
11: तो आप भी अपनाओ PNG
12: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
13: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
14: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
13: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
14: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
13: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
15: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
16: अरे इसमें क्या है?
15: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
16: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
15: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
16: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
15: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
16: इनका एड्रेस क्या है?
15: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाए। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
6: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
7: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
8: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लास क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
7: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
9: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाए एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहाँ 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
10: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
11: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
10: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
11: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
12: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स

0: कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
1: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिथोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिथोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01 4934 9322 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए।
6: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
7: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
8: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी के लिए या
7: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
9: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी, आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिथोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिथोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, टीएमटी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी टीपीए के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
9: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
8: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
9: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
8: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
10: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
11: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
10: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
11: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाइड HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
7: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
8: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारों की रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
5: क्या कर रही है?
6: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
5: फिर से? अभी तो गई थी।
6: हाँ, फिर से जाना है।
5: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
6: गाड़ी नॉट इन बजट।
5: अरे, गांधी मोटर्स है ना?
6: गांधी मोटर्स?
5: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
6: तो कब चलें?
5: अरे, इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
7: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000101। 444 पर।
8: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
9: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
10: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
11: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Grisal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
10: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
11: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
10: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
12: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारों की रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।

0: इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट। नो है 8607274999।
1: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
4: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहाँ पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहाँ 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
6: बोलिए मुझे जीजा जी।
7: क्या जी?
6: क्या आपने लगाई PNG?
7: हाँ जी।
6: क्यों जी?
7: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
6: और सेफ्टी
7: की चिंता स्टॉप,
6: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
7: मतलब
6: एक्स्ट्रा खर्चा
7: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
6: हाँ जी
7: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
6: बिल्कुल सही।
7: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
6: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
6: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
6: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
6: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
7: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलेटेड हो।
8: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लास क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
7: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
9: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निःशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
10: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
11: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
10: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
11: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
12: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
3: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
2: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी बिहाइंड सुखम टावर भिवाड़ी।
4: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
5: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
4: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
5: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
4: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
6: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
7: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
6: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
7: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
8: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
8: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियां हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्ज्वल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
10: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूँ। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूँ और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
4: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
12: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
4: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
12: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
4: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
2: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
3: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
2: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
13: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क संपर्क करें। OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।